0: उन्हें ऐसे स्कूल टीचर, तो मैं ये करती हूँ कि महरम के पहले 10 दिनों में किसी वक्त जब मेरे पास उर्दू की क्लास होती है तो मैं उन्हें छोटे इमाम अली असगर के बारे में बताती हूँ कि वो इतने छोटे थे कि प्यास लगी हुई थी और उन्होंने अपना मुंह खोला, रो रहे थे, तो जालिमों ने तीर से उनको शहीद कर दिया। ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन है कि हम जब तक अपने, हमें एक शिद्दत पसंद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और लेकिन हमें अपने मज़हब को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप करना चाहें। उसके साथ ही मैं जो है कि हमारे साबका पीटीआई के सदर इमरान महबूब की एलिया, उनकी वफात हो गई है कुछ हफ्ते पहले, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और बहुत यंग एज में मेरी बहन जस्ट 41 ईयर्स की थी, 41 साल की थी। अभी तो बच्चों के ख्वाब उनकी ये वो जो नहीं, बेचारी कुछ भी नहीं दे सकी, लेकिन जाते वक्त हमारे भाई इमरान महबूब के कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ, जो कि वो अब माँ भी बनेंगे और बाप भी बनेंगे। उनकी छोटी छोटी दो बेटियाँ हैं, गालिबन 3-4 साल की और 6-7 साल की दूसरी। तो सारे सुनने वालों को दरख्वास्त है कि इमरान भाई के लिए दुआ मांगे, उनकी बेगम के लिए दुआ मांगे, इमरान भाई के लिए इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे ये सब काम करने के लिए।
1: ठीक।
0: और जी हाजी मुस्तफ़ा अंकल, मैं उनको अंकल जी कहती थी। मेरी उनकी मुलाकात जब मैंने इनवान लिस्ट बनाई थी 85 ईयर्स अगो,
1: अच्छा,
0: तब मुलाकात हुई थी। और अंकल जी का मेरा मिजाज बहुत मिलता था, हमने जो कहना होता है हम वो कहते ना, मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम ज़रा फूल गमले के समेत मार देती हो, तो अंकल भी इसी तरह के थे। मेरे बड़े बड़े उनके साथ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे बहसें वगैरह हुई हैं, लेकिन दिल के इंतहाई साफ, अपने वतन से इंतहाई मोहब्बत करने वाला, चाहे वो पाकिस्तान का जलजला या सैलाब आए, चाहे कश्मीर में आए, अंकल जी ने सबसे आगे खड़ा होना है। फिर अंकल जी वो जब मुझे अफसानी याद, जब ये वेस्टब्रो मस्जिद की बुनियादें डालने के लिए कुछ चंदे वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, क्योंकि वो तो ना, उन्होंने तो कभी क्लेम भी नहीं किया ना, मतलब मैं ये हूँ मैं वो हूँ। किस तरह नैरोब्रो में डोर बाय डोर जाके जो नहीं है चंदे के लिए काम करते थे, शायद वो खुद इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने किया है एक ऐसा पौधा कि नस्ल बर नस्ल लोग उर्दू ज़ुबान को सुनेंगे, और वो अपने आप को सिर्फ इस्लाम का खादिम कहते थे। मैंने बखुदा उनके मुंह से कभी नहीं सुना, मैं कहती थी, क्योंकि मैं जब वेस्टब्रो की मस्जिद आती है तो मैं कहती हूँ कि ये अपने बच्चों को भी कहती हूँ ये मेरी मस्जिद है, तो मेरी मस्जिद इसलिए कि मेरे पेरेंट्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो, जैसे कि हमारे घर में 3 फोतगियाँ हुई हैं, मेरे वालदा की, मेरे वालिद की, मेरे हस्बैंड की, तो नमाज जनाजा वहीं पर अदा किया गया। फिर एक ज़माने में उनको कुछ पार्किंग का मसला था, मैं उस वक्त काउंसलर थी, उस वक्त भी जो मेरे से हो सका था मैंने किया। लेकिन अंकल के मुंह से मैंने नहीं सुना कि जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वो बेचारे सीधे साधे से इंसान थे, उनको यही था कि ये कहते पुत्र मस्जिद बाद रहनी चाहिए थी, मस्जिद बाद रहनी चाहिए। और वो कोई जैसे नहीं होता कोई सोच के बयानिया आदमी तैयार करता है, अंकल की ये नेचर नहीं थी, उन्होंने बस जो कहना है सीधे दिल से कह देना है।
1: बिल्कुल,
0: अल्लाह ताला उन पे रहमत करे, उनकी कब्र को कब्र के जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। लेकिन अपने पीछे जो नहीं है वो एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के गए हैं कि जैसे कि वो पाकिस्तानियत की बुनियाद रख के गए हैं,
1: क्योंकि
0: जुबान के बगैर कुछ नहीं है। हमारे बच्चे चाहे अभी पहली जनरेशन के या दूसरे लोग घर के बड़े सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे स्टून में बैठे हुए हैं ना, उनके सब कॉन्शियस में उर्दू जा रही है।
1: बिल्कुल।
0: और ये काम ऐसे प्लान करके नहीं रख सकते, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया था, और जो खुदा के प्यारे लोग होते हैं रब

0: को वसीला बनाता है।
1: बिल्कुल
0: मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती।
1: जी बिल्कुल जी, आजी साहब के खिदमात और उनके काम, उनका किरदार हमेशा के लिए हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। और जो उन्होंने सदका जारिया हमारे लिए छोड़ गए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म की सूरत में, अपने बच्चों की सूरत में, और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे उनके बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी, ख़ास तौर पर रज़ा मुस्तफ़ा साहब का, अगर मैं, क्योंकि मेरा इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है जब मैं डेनमार्क में आया, इससे पहले इनके बड़े भाई उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, सुना मैंने, और मिलता भी उनको, लेकिन रज़ा साहब भी अच्छे तरीके से अपने खिदमात को पेश कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए सदका जारिया की सूरत में ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और सादगी या पढ़ाई का तल्लक मैं समझता हूँ खिदमत से तो नहीं होता। खिदमत अगर आप, जैसे आपने फरमाया कि दिल से अगर कोई कर रहा है या अपनी नेक नीति के साथ कर रहा है, तो उसमें डजंट मैटर के वो
0: नहीं, अल्लाह ताला के रास्ते खोलता है,
1: रास्ते खोलता है आप, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला इसी तरह सिलसिला चलता रहे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं कि जो हमारा कोर इशू है इस वक्त, डेनमार्क की हुकूमत इस वक्त तश्कील पा चुकी है 69 डेज़ के बाद, 69 दिनों के बाद। तो इस हुकूमत को एक तो लुबना साहिबा ये बताएं कि इतना अरसा क्यों लगा और इसमें क्या कुछ नई चीज़ें कोई उन्होंने जन्म लिया जिसकी वजह से इतनी डिले हुई, क्योंकि इससे पहले हुकूमतें 2 महीने के अंदर अंदर बन जाया करती थी, और ये हुकूमत अगर बनी है 69 दिनों के बाद, तो इसमें क्या कुछ आपने महसूस किया अपने विजन के मुताबिक, बताएं।
0: इसमें बहुत तोड़ फोड़ हुई नहीं, डेनमार्क का आइन कहता है कि आपने 2 महीने के अंदर जो नहीं है अपनी हुकूमत को तश्कील देना है। डेनमार्क का आइन ये भी कहता है कि आपने मंडेट ज़ाया नहीं करना, यानी आपने ये नहीं कहना कि हम तो 2-3 इकट्ठे हैं, तुम हमें पसंद नहीं, तुम नहीं शामिल हो सकते। और मामला जो इलेक्शन का हॉट इशू था, जिस तरह के पिछले कई दफ़ा हुआ है, वो था तारकीन वतन से मुतल्लिका पॉलिसीज। तो इसलिए ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि सोशल डेमोक्रेट ने गैर मुल्की दुश्मन पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया था उन इलेक्शन के दौरान भी, जो नहीं ऐसा ही था। मेटे फ्रेडरिकसन ने न्यूयॉर्क की तकरीर में यहाँ तक कह दिया था, हाथ नहीं जोड़े थे फिज़िकली ऐसे, कि भी जी जो तुम सोने की चेन पहनने वाले और जो तुम मुसलमान हो, खुदा के लिए चले जाओ। और वक्त के साथ से वो अपनी जो है अपना झुकाव हर तरीके से इसराइल के बारे में बात करती हैं। अभी कल परसों एक रेडियो का, टीवी का इंटरव्यू था, तो उससे एक जर्नलिस्ट पूछता है कि तुम्हारी आइडियल कौन है, वो जवाब में कहती हैं इसराइल की पहली खातून सदर गोल्डे मैया। और आपको अच्छी तरह पता है वो तो जो फ़लस्तीन की पॉलिसीज़ में इसराइल की जो भी कहानी है उसमें दिलचस्पी रखती हैं, कि उन्होंने बहुत कत्लो गारत किया था। तो अगर हमारे एक डैनिश जो है वज़ीर आज़म है, उसकी आइडियल ये है, तो फिर आप अपने आइडियल को ही फॉलो करते हैं ना। दूसरी तरफ मैं लास लुके को लूँगी। लास लुके को मैं जब वो कंसर्वेटिव में था तब से जानती हूँ, 25-30 सालों से।
1: अच्छा।
0: लेकिन पहली बात है कि जब वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं, तो मैं समझती हूँ चाहे अपने मतलब के लिए, चाहे कह लें किसी भी वजह से, उनके रवैये में बहुत फ़र्क आया। ये जो कुरान लॉ जिसको कहते हैं कि आपको कोई भी मजहबी किताब जलाने की इजाज़त नहीं है, इसमें उन्होंने बहुत एक मेल रोल अदा किया। मैंने उन्हें शुक्रिया का ख़त भी लिखा था, मैंने फूल भी भेजे थे कि थक फॉर सामले डेनमार्क, के आपने डेनमार्क को एक प्लेटफॉर्म पर बैठा किया, थैंक यू। वरना जो खबरें वो आ रही थी, पुलिस वाले जो नहीं हरासा थे कि एक अंदरूने शहर में एक पैरलर फौज तैयार हो रही थी तारकीन वतन लड़कों की खास करके। तो मैं खुद कोपनहेगन की रिहायशी हूँ और मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है, मैं नहीं इस तरह की कोई गड़बड़ चाहती, और जो जो करता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद एसएफ पिछले कई सालों से बिल्कुल जिस तरह नहीं, यस सर का उसका रवैया, वो एसएफ चली गई जो कि जिसकी मैं एक दफ़ा मेंबर थी, एसएफ की जो खातून अव्वल है वो कोई, वो कुछ भी नहीं कहती, वो कुछ भी नहीं बोलती। मुझे याद है कि जब हिजाब ममनू किया गया था तो सबसे पहला बयान उनका था, जिसके जवाब में पुलिस ने ये कहा था क्या हमारे पास और कोई काम नहीं कि हम जिस खातून ने हिजाब पहना हम उसको पकड़ें और उसको जुर्माना दें। हालांकि नंबर ऑफ लेडीज थी पूरे शहर में जो मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं निंजर टाइप, नहीं कि आंखें सिर्फ नज़र आ रही हैं जिसम नहीं नज़र आ रहे, उसमें उन्होंने मतलब बड़ा, मैं समझती हूँ कि जो रेसिस्ट हैं उनको एक उनसे हामी से हामी मिलाई थी, क्योंकि ये यहाँ का आईन है कि आप जो है आपको पहनावे का और अपने मज़हब का खुली इजाज़त है, आईनी इजाज़त है। फिर पीछे रेडिकल वेंसा रहती है, रेडिकल वेंसा जो है वो उन्होंने अपनी बहुत सारे मैंडेट अपने वक्त में ज़ाया किए थे कि तारकीन वतन की हामी में, तो उनका तो हमें मौक़ पता है। फिर पीछे थी इनिस लिस्ट, इनिस लिस्ट के कुछ अपने ही इशू थे क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में नौजवान, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि जो नौजवान वोटर्स हैं लाइक पहली दफ़ा के वोटर्स, जज्बाती चला दो फाड़ दो इस तरह की नारे ना वो पसंद करते हैं, उन वो कहते हैं जी हमें वोटों से कर्ज है, तो उनकी टारगेट होते हैं पहली दफ़ा के जो वोटर्स होते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें रखी कि जी हमें डेंटिस्ट चाहिए, ये भी बड़ी अजीब बात है कि डेनमार्क में सारा इलाज मुफ्त है, डेंटिस्ट मुफ्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने रखा ट्रांसपोर्ट,
1: अच्छा
0: के जो है 21 साल की उम्र तक ट्रांसपोर्ट जो नहीं, सरकारी ट्रांसपोर्ट जो है जैसे ट्रेन बसें, वो आपने मुल्क के किसी हिस्से भी जाना है मुफ्त है और ये सारी चीज़ें ना।
1: अच्छा।
0: और फिर एक तीसरी थी वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जी हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे।
1: अच्छा, इनिस लिस्टन और
0: इनिस लिस्टन ने कहा कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे।
1: वैसे इनके हलीफ हैं हुकूमत में,
0: इनके इनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो रोल लिया है ना वो सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने उसकी दो वजूहत हैं, अंदरून खाना ये है कि इनिस लिस्ट की अगर आप वो ले हिस्ट्री ले तो ये कोई आज से 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी और वेंस्टा ओनसियर जिसको वीएस कहते थे, इन सारों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसको इन्होंने नाम रखा इनिस लिस्ट। लेकिन उनकी पॉलिसियां जो नहीं है वो अभी तक मुकम्मल नहीं है, जैसे मईशत की पॉलिसी कह ले, इसकी कह ले, वो ज़्यादातर जज्बाती बातें करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं हमें नहीं इससे गर्ज के पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं ना घर को चलाने के लिए। उन्होंने जो रोल लिया कि अगर तुमने, यानी जिसमें स्पेशली तारकीन वतन का वो है कि इनको अगर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया जितना तुम कर चुके हो, तो हम आपकी हुकूमत डिसॉल्व करने का हमारे पास मैंडेट है। अब इसमें जो अच्छी बात हुई है कि वो हमारे चौकीदार बन गए हमारे हकूक की हिफाजत के लिए। इंगस्टॉयबेया जो बक बक बक बक जो नहीं है, शी इज़ नॉट देयर। डेंस फोल्के पार्टी वो जब उसकी मर्जी होगी वोट देगी, जब नहीं देगी तो वो मतलब ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं।
1: अच्छा।
0: और बाकी सियासत ऐसी अच्छा। कोई चीज़ नहीं कि जिसको आप डिक्टेट करें और वो हो जाए, सियासत ये है कि जो मुमकिन है उन हालात में आप वो करें।
1: अच्छा, आपने ये जो फरमाया कि इनिस लिस्टन का ये कहना है कि तारकीन वतन को आपने तंग नहीं करना, तो तंग तो ऑलरेडी वो किए हुए हैं, जो उन्होंने पॉलिसियां जो तारकीन वतन के लिए बनाई हुई हैं या जो उनके मिसाल में इजाफा कर रही हैं तो वो तो ऑलरेडी हैं, उनको बजाय ख़त्म करने के या तो वो तो उसी तरह वो चल रही
0: है। नहीं, डेनमार्क में एक चीज़ है एक सियासत में कि जितना टाइम लगता है ना एक चीज़ को मंजूर, एक बिल को मंजूर करने के लिए, उससे तिगना टाइम करता है लगता है उसको जैसे कालादम करार देने में।
1: अच्छा।
0: तो जैसे मैंने एक चीज़ पे, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, वो नहीं चेंज हो सकती, लेकिन हम ये कर सक, उनका कहना है कि हम इससे जो हो गया सो हो गया, इससे आगे नहीं। और जो सबसे हॉट इशू है मेरे लिए, एक के जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनके माँ बाप चोर है डाकू है, इसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैं रेडिकल वेंस्टा में भी और ये इनके साथ भी डायलॉग में हूँ कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पे यहाँ डेनमार्क में होते हैं उनको बाय बर्थ डेनिश नेशनलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो डेनिश नेशनलिटी हासिल करने का जो वो है एक टेस्ट देना पड़ता है, उसको ख़त्म होना चाहिए। पुराने वक़्त में जैसे था कि आपको एक ज़बान का हल्का सा टेस्ट देना पड़ता था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अब जो है ये एक नाजायज़ हरकत है, क्योंकि इस बारे में बहुत लिखा जा चुका है। तकरीबन 3 समर्स, 3 गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं होती उनके पास, अखबारों वालों के पास या टीवी के पास, इसके ऊपर हम बहुत सारे हम लोग कुछ लोग हैं, कमेटी है, हमने बड़ी मेहनत की है। लेकिन अब अगर यही है कि हम आने वाले वक्त में उनसे मुज़ाकरात करने जाएंगे इसके साथ, इंग्लिश लिस्ट के साथ, कि आप बताएं यहाँ पे आपने ज़बानी कह दिया ना कि वी गोइंग इन फॉर लैंग्वेज, आप मुझे बताएं, एक सिंपल सवाल है, जो बच्चा आज 14-15 साल का है, कल को हो सकता है वो आपका वोटर बने, आप आने वाले लोगों के लिए, खासकर स्पेशली वो बच्चे जो यहाँ के स्कूलों में पैदा हुए हैं, क्योंकि मेरा मौकफ़ ये है कि अगर वो ये चीज़ें क्लियर नहीं ना कर सकते, देन एज अ टीचर हम फेलियर रहे हैं कि हम उन बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं सके, वो यहाँ के पढ़े बच्चे वो क्लियर ही नहीं कर सकते। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नहीं पहली लिस्ट पे है
1: जी।
2: अभी आपने कहा कि गारी खेल वेंस्ट्रा, आप उसकी मेंबर भी हैं और बोर्ड में भी बैठती हैं, तो अभी ये जो नई हुकूमत बनी है उसमें आपकी पार्टी जो है वो उसमें वजारतें भी हैं, तो सोशल डेमोक्रेट का अभी ये 11 जून का एक बयान है जो उनकी फेसबुक साइट पे आया है, और आपको पता पेट्रोल पे डेंस फॉर की पार्टी चाहती है कि औकीफ जो है वो ख़त्म हो, ताकि जो है वो जो शहरी हैं उनको सस्ता पेट्रोल मिले, ताकि वो इतने खर्चे ना उनके बढ़े, जिसमें सोशल डेमोक्रेट जो लिखती है वो मैं डेनिश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सोशल डेमोक्रेट पिंसिन येल्पन्स कल्को छिलतेम तहा लंग छिल आवार, यानी उनका कहना है कि मदद उनको देनी चाहिए जिस तरह हमें छूट मिलती है
0: किलोमीटर की।
2: नीचे लिखते हैं टेंस फॉल्कपटी, यानी वो क्या चाहते हैं, फिंग छिल एल उलेनिंग और चुविस्ता छिल छिल फिल टीवी छांका ई डेनमार्क, यानी कि ये सोशल डेमोक्रेट 2 हाथ आगे चली गई है। वो कहते हैं हम गैर मुल्कियों को भी जो है ना वो छोड़ नहीं देना चाहते, हम सिर्फ उनको देना चाहते हैं जो काम करते हैं। तो लुबना साहिबा, आपकी पार्टी इसमें उनका क्या बयान आया, क्या रद्द अमल आया इसको, मैं पढ़ के जो है बड़ा मुझे भी तकलीफ हुई, कहते हैं कि जी ये हुकूमत आई है इसमें इनिस लिस्ट गारी खेल वेंस्ट्रा एल चैनल से तीनों पार्टियां जो हैं वो गैर मुल्कियों के लिए जो है एक नरम गोशा रखती हैं। लेकिन इस बयान पे जो है मैंने उनका कोई बयान नहीं पढ़ा या मेरी नज़र से नहीं कम अज़ कम गुजरा कि उन्होंने इन्हें कहा हो। और अगर आप मोहन पुल्स को जो हमारे इंटीग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी आप बयान ले लें तो वो तो बिल्कुल उसी तरह बयान दे रहे हैं जिस तरह डेनिश फॉल्के पार्टी देती है।
0: पहली बात है कि आप ये सीख लें कि डेनिश फॉल्के पार्टी और सोशल डेमोक्रेट में एक नाम का फ़र्क है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि जैसे फिटोस्कोप है, उसकी माँ जो थी वो इस्टोग्रो में एक नामी ग्रामी सोशल डेमोक्रेट थी। जब कुछ साल पहले जब वो हुआ था, क्या था उसको कहते हैं, एफ्टरलून की सारी कहानी चली थी, तो बहुत सारे लोगों ने मिलके कि ये जी हमने इस मुल्क को चलाया, वो फेयर भी था, तो आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है कि ये एक, क्योंकि आपको कई चीज़ों में अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करनी चाहिए, तो ऑफकोर्स आप जब वो वक्त आएगा कि ये चीज़ विल से हो तो फिर ही तब बात की जा सकती है ना। तो मेरी जितनी एनर्जी है मैं उस वक्त के लिए जमा करूँगी कि आप मुझे बताएं आप रेडिकल वेंस्ट्रा वन कहीं गोफ दे या? एक ली नू, मेरी बहुत अच्छी सामा बाइट है इंग्लिश लिस्ट के साथ भी और दूसरों के साथ भी। लेकिन और एक और चीज़ जो रेडिकल वेंस्ट्रा ने की है और जो है मुझे इस पर फ़ख्र है, क्योंकि होता ये था सोशल डेमोक्रेट में या एसएफ में कि पार्टी के जो गैर मुल्की मेंबर्स होते थे उन्हें कभी भी सामने की किसी कोई अहदे इवन पार्टी के अंदर भी नहीं दिए जाते थे ना, बस मैं लूबा नहीं जिसके कदे साथ भागते जाओ। रेडिकल वेंस्ट्रा ने आज से कुछ साल पहले ये किया कि हमारी एक अफगानी खातून है, उन्होंने उनको नायब सदर बनाया पार्टी के, उसके अलावा अब इस वक्त जब इस्लामी फोबिया है डेनमार्क में, मैं सलूट कि उन्होंने एक गैर मुल्की खातून जो कि छुपाती नहीं है कि मैं अफगानी हूँ, उसको एक वजारत दी है। और ये हमें उम्मीद दिलाती है कि आने वाले वक्त में हमारी आने वाली नस्लें, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो सिर्फ यही नहीं कि उनका ये नाम है, उनकी जो फाउली है उसको रिस्पेक्ट दी जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए ना।
2: लेकिन लुबना साहब, आपने समीरा नवाज का जिक्र किया जो नायब सदर है पार्टी में, क्या उनकी वजारत बनती नहीं, क्योंकि वो तो नायब सदर है पार्टी की, या तो होता ना कि वो पार्टी में ओहदा ना होता कोई, ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि जी उनको एक वजारत दी गई है, यानी उनको नज़रअंदाज नहीं किया गया, तो नायब सदर को तो आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पे भी तो इक्तफा कर सकते थे कि उन्हें सदर बना देते, एक स्टेप ऊपर कर देते ना, ना ते ऐसा फ्रेंचाइज़
2: और मैं खुद इसकी बड़ी सताइश करता हूँ। दूसरा, आपने जो डेनिश पासपोर्ट की बात की कि हमारे जो यहाँ पे इस वक्त डेनिश पासपोर्ट लेना ऐसा ही है, बल्कि आप डेनिशों को कहें कि आप ले लें तो वो भी नहीं ले सकते,
0: नहीं ले सकते।
2: तो फेल हो जाएंगे सारे। अच्छा, लेकिन जो मेरी एक तजवीज़ है जो मेरे ख्याल मेरे जहन में कई सालों से है कि डेनमार्क में आपने अगर कोई भी काम करना है तो आप ये मिसाल के तौर पे स्टेप लेते हैं कि जी हमने ये कानून बनवाना है या बनाना है, तो वो हमेशा सारे इनकार कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी ओके वी लिव इन फसर, यानी इसको एक तजर्बे के तौर पे इस्तेमाल करते। तो लुबना साहब, क्या हम ये नहीं कर सकते कि हक तो सबको होना चाहिए, लेकिन हमें भी पता है कि सोशल डेमोक्रेट डेनिश फॉर्ड पार्टी खुनसा ये कभी नहीं होने देंगे, लेकिन जो मेरी तजवीज़ है कि हम विस वी पिल्लो ना, हमारे जो बच्चे हैं अगर उन्होंने कॉलेज ले लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉलेज के लेवल पे उन्होंने तालीम मुकम्मल करी है, तो उनको हक होना चाहिए जिस तरह हमें उस वक्त हमने जब जिस तरह आप कह रही हैं ना जबान का टेस्ट दे के, हमने भी इसी तरह लिया था, वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस वाला साहब ने बैठा तो उसने चार सवाल किए थे, जवाब दिया था, कहता जा कर जा ठीक है, वो साल डेढ़ बार जो है वो पासपोर्ट मिल जाता था। अगर हम ये कानून बनवाने में एक यानी कोशिश करें कि कि हमारे जो बच्चे जो तालीम हासिल कर लेते हैं कम्युनिज्म की, अब तो पहले 18 साल का ऑटोमेटिक होना चाहिए, लेकिन अगर हम क्योंकि 18, 19, 20 में जो है वो जाके कम्युनिज्म मुकम्मल हो जाती है, तो ऑटोमेटिक अगर उनको पासपोर्ट दिया जाए बगैर ये टेस्ट दिए वगैरह वगैरह वगैरह, यानी क्या ये तजवीज़ आप समझती हैं कि काबिले गौर है?
0: मेरी तरफ से तो नहीं है, क्योंकि इसमें अब मैं देखें मैं टीचर हूँ
2: जी,
0: मैं काम करती हूँ कि बच्चों को इंक्लूड किया जाए, तो फिर कैटेगरी बन जाएगी ना कि अब किसी के हर बच्चे के अपने घर के हालात हैं,
2: ठीक है।
0: अब बिलीव में अब पाकिस्तानी घरों में भी मंशियात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं जिसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको कभी भी अप्लाई करना ना पड़े, उनका डोबिज टेस्ट या जो जो भी है वो इनफ होना चाहिए कि डेड बाई डर्थ हुए, फिर वो जो हैं जो कि बड़ी उम्र में यहाँ पे आए हैं, डेनिश स्कूलों में नहीं गए या वो नहीं हुए, उनके लिए एक सिंपल होना चाहिए जिसको वेयरडिस डेंस कहते हैं, कि आप जाके 8वीं 9वीं बच्चों से पता कर लें, उन्हें नहीं पता वो सवाल जो कि उस डेनिश टेस्ट में है, तो और या आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक है बोआ फौसले शहरियों की तरफ से, यानी उसमें पता नहीं कितने दस्तखत
2: से 50,000
0: हाँ, तो अगर आप वो कर लें, अगर हम बोआ फौसले कर लें साथ हम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करके उनको वक्त से पहले लॉबी बना के इस पर आमादा करें, मैं इन दो चीज़ों के लिए जाती हूँ।
1: ये तो मुमकिनात में है,
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है,
1: मतलब है, इतना ये मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, दूसरा आप एक तो जिक्र किया आपने जो मिनिस्ट्री मिली है वो अफगानी खातून को,
0: जी जी,
1: आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ तो ज़ाहिर है वो तो चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने तारकिन वतन के जो मसाइल या जो प्रॉब्लम हैं इधर उनको भी कोई काम करने की कोशिश कर सकती हैं?
0: समीरा ने हमेशा कहा है कि मैं फ्रंट लाइन पे कभी नहीं खेलूंगी तारकीन वतन की, मेरे पास मेरी अपनी तालीम है उसके मुताबिक मैं करूंगी।
1: अच्छा,
0: लेकिन जाहिर है कि जो पार्टी की पॉलिसी होगी तो अंदर तो ये बातें होती हैं ना,
1: ठीक है।
0: और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था जब मैं काउंसलर थी कि नहीं तुम तो सिर्फ इनवान का स्पोक मैन हो, तो मैंने उसको टिका के जवाब दिया था कि इंट्रोगेशन के मुसाइक द टाइम बेबी बोर्न होता है वहाँ से शुरू होते हैं, जैसे खतने हो गए इस तरह की चीज़ें, ये आप वो क्या चंड क्यों उतारते हैं अस्पताल में, और जब तक वो ताबूत नहीं होता तो इससे तो बड़ा कोई अमल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये एक चॉइस बनाई है कि जैसे वो उसी के बारे में फ्रंट पे रहेंगे, लेकिन ऑफकोर्स हमारी साथी हैं, हमारे से बातचीत करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनकी हर चीज़ के बारे में मीनिंग है।
1: ठीक, अच्छा इस हुकूमत से आप क्या समझती हैं कि मुल्की या बैन अल-अक़वामी हालात इन पर कुछ पॉजिटिव असर पड़ेगा? ये जो हुकूमत अभी बनी है, सबसे पहले तो डेनमार्क में आप देखें कि यहाँ कोई सियासी तौर पर या समाजी तौर पर या कारोबारी तौर पर हालात कोई बेहतर होंगे इस हुकूमत की वजह से, ये जो नई पार्टी है।
0: मेडे फर्गसन ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि तुम और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, और मैं क्योंकि ट्रेड यूनियन की वो मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठिलिस रिप्रेजेंट हूँ, जो कि पुल का काम करते हैं, जो गैर मुल्की असातज़ा हैं, तो हमारी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो हम क्यूकम्बर या खीरा इतना लंबा लेते थे वो इतना हो गया, जो मुझे वो एक किक्स हैं उसके बिस्किट्स हैं इटालियन लू, उसमें ज़रा दारचीनी होती है, उसमें पहले 20 होते थे अब 12 हैं। तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी हमने आपके साथ शॉपिंग करने नहीं जाना, आप हर वक्त बैठ के उसका बॉन्ग देखती हैं। तो मैं कहा बेटा मुझे समझ नहीं ना आती कि टोकरी में कुछ भी नहीं है, 1200 का बिन बन गया, 1400 का बन गया, और इस तरह बैन अल-अक़वामी तौर पर देखें हम ऐसे मुसलमान जो नहीं हैं, हमें डेनमार्क से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि डेनमार्क का झुकाव 100% से ज़्यादा जो नहीं है इस प्राइम मिनिस्टर के होते हुए वो है इसराइल की तरफ। ठीक है, इसी तरह जो नहीं है डेनमार्क का, जब वो मोदी आया था तो हम कुछ लोग थे, हमने कोई मीटिंग करने की कोशिश की कि ये करते हैं, इंसानी हकूक का इस्तेसाल करते हैं, हमें किसी ने जवाब ही नहीं दिया।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा डेनिश सियासत में होता नहीं है। फिर मेरी अपनी पार्टी में जो मसले मसाइल हैं, जैसे कि जब कश्मीर की मैं बात करती हूँ, शायद उनके ख्याल बदल गए हों, जो हमारी पार्टी के एक जो मुझे इस वक्त क्या नाम है उनका, जो वजारत खारजा भी रह, वजीर खारजा भी रह चुके हैं, बैठी है निजा, उसका एक भाई जो है वो पुलटिकन का गरीब छुआ।
1: अच्छा अच्छा, कश्मीर का आपने जिक्र किया तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस हवाले से कोई मौजूदा हुकूमत ने कोई अपना कोई मौकफ दिया हो या कोई बात ऐसी?
0: मौजूदा हुकूमत ने क्या 12 सीटों का सारा मसला है
1: जी जी,
0: और मैं इस हक में नहीं कि उन 12 सीटों को ख़त्म किया जाए। इसका मतलब है कि जो मेरे वालदैन महाजर थे, मेरा नाना नानी सारे वो श्रीनगर से आए थे, कि आपने जो नहीं है अपना ये मौक़िफ़ ख़त्म कर दिया है, जो पाकिस्तान का जो इधर पाकिस्तान की तरफ आज़ाद कश्मीर वो इधर रहे और दूसरा उधर है ना, आप दस्तरबार हो रहे हैं, बाकी हम लोग लुटा के वहाँ पे आए थे, मतलब सारा कुछ छोड़ के आए थे इस पाकिस्तान के लिए, तो हमें बहुत सारे लोगों को जो भी छोड़ के आए थे वो तो नहीं मिले थे ना, लेकिन इसको एक सियासी रंग दिया गया है कि जी वो कहीं भी वो कश्मीर रहते हो तो फिर भी उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान 70% गालबन 70-75% आज़ाद कश्मीर का जो सालाना बजट है
1: जी,
0: वो पाकिस्तान से आता है, वह हुकूमत पाकिस्तान देती है
1: जी।
0: कश्मीर के इतने वसाइल नहीं हैं कि वो खुद ही खाएं, खुद ही पिए और सब कुछ करें। जहाँ तक एक बात जायज़ थी कि कश्मीर से बिजली जाती है या हमारा पानी है उसमें रॉयल्टी उन्हें दे दी है, लेकिन ये तो नहीं ना कि अब बढ़ते जाएँ, स्टेट के अंदर आप स्टेट बनाएं, आप फौजियों को गालियाँ दे रहे हैं, ज़रा अंदाज़ा करें कि इंडिया उसको कैसे खबरें दे रही है। पाकिस्तान के फौजी अगर कश्मीर में नहीं होंगे तो वो तो जिस गिरती हुई दीवार है धक्का दे के अंदर आ जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको ये नफरी याद है कि इतने फौजी वहाँ पे आए हैं, लेकिन आप देखें अच्छे बुरे लोग हर तरह के होते हैं। ठीक है, मैं टीचर्स हूँ, टीचर का काम करती हूँ, अभी पिछले दिनों एक बड़ा केस था हमारी ट्रेड यूनियन में कि एक और टीचर था, उसकी बीवी की डेथ होगी, वो सोडा वाटर की बोतल में अल्कोहल लेके आता था, सारा दिन पीता रहता था अपने काम को काम करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं सारे टीचर ऐसे हैं। और जाके देखें कि कश्मीर, कश्मीरियों का मुख्तलिफ जगह कॉलेज से लेके आगे पीछे उनका एक कोटा है कि कश्मीरियों को फौज में भी लेना है, उनको इस जगह भी लेना है। ऐसी कोई बात नहीं कि फौजी कश्मीरी जनरल कर्नल नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो एक जो कालदम कमेटी है, इस सारी चीज़ के पीछे जो नहीं है वो है इंडिया का हाथ।
1: ठीक है, ये आपका ज़ाहिर मौकफ है
0: जी, लेकिन मेरा मेरा मौकफ नहीं है, मैं कश्मीरन हूँ, मेरा खानदान मुजफ्फराबाद में रहता है।
2: पाकिस्तान से जो है वो 12 सीटें जो है वो दी जाती हैं कश्मीर में, और एक सीट का कहते हैं कि 1,00,000 जो रिफ्यूजी है पाकिस्तान में कश्मीरी, तो इसका मतलब है कि 12 सीटें 12,00,000
0: करोड़ है, लाख नहीं है,
2: सॉरी। तो क्या इतने रिफ्यूजीज हैं कश्मीरी जो हैं, तो क्या ये पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली नहीं रखी हुई, क्या उसको उस इलेक्शन को या वहाँ पे जो हुकूमत है उसको नज़रअंदाज उस पर नज़रअंदाज होने के लिए ये 12 सीटें रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल टोटल में कितनी 24 या कितनी 25 हैं वहाँ पे, तो अगर यहाँ से इतनी जाएंगी तो वो अपनी कश्मीर में कैसे हुकूमत बनाएंगे।
0: एक बात को आप ये कह सकते हैं ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, अगर आप नेगेटिव होंगे तो कहेंगे आधा खाली है, पॉजिटिव होंगे तो कहेंगे आधा भरा हुआ है। अब ये है कि ये वो मसाइल हैं, कश्मीरी जो लोग हैं उनको हक है कि जी हम मुतमईन नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो जैसे ये बिजली सस्ती हुई गंदम का, अब एक जो पाकिस्तान में पंजाब में बंदा है वो 3 गुना ज़्यादा गंदम के पैसे दे रहे हैं,
2: ठीक है,
0: कश्मीरी नहीं दे रहे। लेकिन ये तो नहीं जो लुच्चा सबसे ऊंचा, आपको एक देखें इसका असर इस तरह पंजाब में भी एक कमेटी हो सकती है कि जी ये साढ़े मामे लग देना, असी इनू सस्ता दे, असी क्यों 300 किलो गंदम का दे।
2: लेकिन जो कत्लो गारत वहाँ कश्मीर में हुई है
0: जी जी,
2: क्या जिस तरह ये 26 नवंबर को पाकिस्तान में भी हुई थी, उसके बाद जो है वो तरीके लबैक के लोगों को भी कत्ल किया गया, तो क्या आप नहीं समझती कि ये एक सिस्टम है, निज़ाम है पाकिस्तान में जो हमारे जो चंद जर्नल्स जो हैं वो उसको बना के चला रहे हैं, और वहाँ लोगों को अपने, अब तो पाकिस्तान में ना तो आपका कोई आइन है ना कानून है, वहाँ पे तो जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची जो पाकिस्तानी निसार थी उसको जो गोलियां मारी गई उस पे उन्होंने माफियां मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वही पाकिस्तानी पासपोर्ट की पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में रहती है उसके लिए ना कोई आवाज उठाता है ना कोई बोलता है ना कोई करता है, तो ये दोहरा मयार नहीं है आपकी नजर में?
0: रजा, दो बातें हैं, एक तो हम पाकिस्तानी जब भी तब्दीली चाहते हैं ना हम शॉर्टकट चाहते हैं ऑलवेज, हम आने आज से 20 साल की बात नहीं सोचती, मैं एग्री हूँ आपसे सारी चीज़ों की, लेकिन यही तो नतीजा है कि हर इस हुकूमत का वो तख्ता उल्टा के जी जादू की छड़ी चढ़ने से हो जाएगी। नहीं, हमें चाहिए कि छोटे सेल्स में काम करें। अभी जैसे कि ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जो आने वाले वक्त में कौमी असम्बली होगी आज़ाद कश्मीर की, उन लोगों के पास ये हक है कि 12 हों या 14 हों या 6 हों, तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं?
2: लेकिन अगर वो 12 इधर से अक्सरियत होगी तो वो किस तरह अपना वो वहाँ पे
1: उसको चेंज करेगा? उनका यही मुतालबा है ना वो कालादम कमेटी जो है कि ये 12 सीटें आज़ाद कश्मीर से सिलेक्शन इनकी हो अगर होनी है, क्योंकि ये 12 बंदे जो हैं ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से,
0: जी जी मुझे पता
1: है ना, तो ये आप बताएं ना कि आप स्वीडन में जाके नुमाइंदगी कर सकती हैं अगर आपको
0: नहीं नहीं, लेकिन अब आप स्वीडन से इससे इसका
1: मिसाल दे रहा हूँ,
0: मैं
1: इसका इसकी हैंडलिंग जो है ना ये अच्छे
0: आप बिल्कुल नहीं हुई, तो आप बैठ के बात करें
1: जी
0: कि आप देखें ना कि जैसे कि 1 करोड़ पर MNA मिलता है, अगर इन पे ये है कि जी इस्तेमाल नहीं करते तो बताएं ना बाकी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आप चीज़ को जड़ से पकड़ें, ये नहीं कि जो बंदा बोले उसी का मुंह बंद कर दे, लेकिन है कि जो तो सिविल शहीद हुए हैं इस सारे बलवे में, मुझे बहुत दुख है, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन टच हूँ अपनी ख़ानदान से पाकिस्तान में, उन्होंने फेंटी चढ़ा दी है जो पाकिस्तान से सिपाही फौजी, वो मुझे नहीं पता वो उसका जिक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर एक सिविल शहीद होता है तो उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, ये आ जाती है, वो जाती हैं। मेरे खावन का भांजा इतनी बुरी तरह जो नहीं है वहाँ पुलिस में काम करता है मीरपुर में, उसकी इतनी बेचारे की फेंटी फादी है कि उसकी माँ ने वो बस आखिरी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी। अब जब आप इतने करीब हैं और देख रहे हैं कि ये वाला यानी जो सरकारी मुलाजम है उसके साथ ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो इतने घूस बेचते पैन है। मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में कोई बिजली किसी सरकारी बंदे की जरूरत नहीं जाके मीटर की रीडिंग ले, वो टांगे तोड़ के बाहर फेंकते हैं। तो जो अनखी सिविल है उसको भी देखना चाहिए, तो ये इतना सिंपल नहीं है।
2: नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है कि इतना सिंपल नहीं है, लेकिन जो आपने जिक्र किया ना कि ये मीडिया में क्यों नहीं आता कि कितने लोगों को जो है वहाँ पे जो सरकारी मुलाजम है उनको जो मारा गया है या शहीद किया गया, तो वो उसकी शायद ये भी वजह है कि वो मीडिया में अगर बताएंगे कि इतने लोगों को वहाँ पे मारा गया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हुकूमत पे कि जी इतने लोग तो वहाँ पे उनको जो है वो कुट चढ़ा दी गई है, तो शायद उसको जो है वो नंबर्स को नीचे रखने के लिए
0: ना। यार मेरा ख्याल है कि इसकी जो मेरा दिमाग कहता है कि इसकी वजह ये है कि जो भी हुकूमती कुवतें हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता क्योंकि एक नहीं है, उसमें यह है कि वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, बट नथिंग इज़ अंडर कंट्रोल,
2: कुछ भी नहीं है। और ये आप सारे कहीं देख लें, ये तो सिर्फ एक चंगेरी की जो है वो देर है कि वो बस यकीन करें ऐसी आग लगेगी कि ये सब जो है उसमें जो है वो जल के खाक हो जाएंगे।
0: लगेगी, लग चुकी है, लग चुकी है।
1: चलें जी, आने वाला वक्त हम सब के लिए या पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लिए भी अच्छा ही हो, और मैं समझता हूँ किसी भी मसले का हल वो एक टेबल पे बैठ के
0: डायलॉग की सूरत में होता
1: है। ताकत से मैं नहीं समझता, वक्ती तौर पे हासिल हो सकते हैं।
0: तो ये जो ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे पंजाब में करते रहे हैं, चाहे ये उसी का नतीजा है ना कि अब हर चीज़ फट गई है।
1: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लुबना साहबा, मैं जितने भी मेहमान आते हैं प्रोग्राम में, मैं उनसे यही ये सवाल करने की जसारत करता हूँ कि हर इलेक्शन में, चाहे वो कमून के हों या पार्लियामेंट के हों, उसमें हमारी अदम दिलचस्पी इस हद तक क्यों होती है कि हम ना तो काउंसलर्स अलेक्ट हो सकते हैं ना पार्लियामेंट के मेंबर अलेक्ट हो सकते हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, ये थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि हमारी दिलचस्पी वक्त के साथ साथ इसमें क्यों कमी हो रही है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाले हमारे बच्चे जो हैं तीसरी चौथी जनरेशन के, उनके लिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम तो अपना वक्त गुजार जाएंगे।
0: देखें, अभी कुछ देर पहले मैंने रजा को कहा कि हम शॉर्ट टर्म की सोचते हैं, ठीक है। दो वजूहत हैं, हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपकी एक मुश्तरिका डेनिश माशरे को चलाना एक मुश्तरिका जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को यंग एज में, जैसे मेरे अबू ने डेंस्क कम्युनिस्ट पार्टी का मुझे मेम्बर बनाया था, आई वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, कि आने वाले वक्त में आपकी ये चीज़ें सीखनी है, क्योंकि जब आप बच्चे ये देखते हैं बेहिसी है, अब्बा उसको बुरा कह रहा है, अम्मा उसको बुरा कह रहा है, जब इखलाकियात की बुनियादी थोड़ी बहुत तरबियत जो नहीं है जिसमें इत्तफाक बताया जाए, आप वो बताते ही नहीं। अब टेलीफोन करके जो बता रहे होते हैं, एक तरफ वो देखता है कि मेरा अब्बा इसको अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल चाल है, फ़ोन बंद होती है तो उसको कहता है जी ऐसा के तैसा जो नहीं। तो इस सबसे पहले हमने अपना मुहासबा खुद करना है। दूसरी बात है कि हम परवाह करते हैं ना, इलेक्शन के दिनों में हमारी हमें पग नज़र आ जाती है कि इन ऊँचा रखना है सारे, क्या वो काउंसलर और क्या वो जो नहीं है। आज तक काउंसलर सिवाए वो कासिम नज़ीर के वो नहीं बता सके कि क्या है, क्या उन्होंने किया है। मैंने एक मीटिंग जनवरी या दिसंबर में की थी 2025 में या जनवरी 2026 में, जिसमें मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम दोबारा ये मीटिंगें वक्तन फक्तन करते रहेंगे, लेकिन उसके फौरन बाद फिर जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन का ऐलान हो गया, पार्टियों में किसी के पास टाइम नहीं थी। तो अब इस वजह से मैं समझती हूँ कि वो जिसको डैनिश में नहीं कहते, मैं आपकी जवाब दे हूँ कि मैंने वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, तो उसमें मैंने इन सब को लिखना है कि बताएं कि आपने पार्टी के कामों के साथ कहीं हमारे लिए भी कुछ किया, हमारे मीन तारकीन वतन जो नहीं है, क्योंकि कमून पे असर इन्फ्लुएंस जो नहीं है سوائے تارکین وطن کی جو ویزا ہے, ڈینش نیشنلٹی, باقی صحت, تعلیم, ان سب, یہ آپ میں ایسے کونسلر کر سکتے ہیں, یہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر میں نہیں بیٹھ کے کر سکتے. ایک تو پاکستانیوں میں بلا جواز یہ چیز آ گئی ہے کہ جی میں نے تو الیکشن لڑنا ہے پارلیمنٹ کا, کیونکہ وہ پاکستان جاتے ہیں بتاتے ہیں ہم ایم این اے ہیں جو نہیں. اس میں میرا خیال ہے زیادہ آپ اپنی اس کی سوچتے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں سوچتے. تو یہ کہ پھر میں لوگوں سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کو پارٹی کے ممبر بنائیں, ینگ بچوں کو جو ان کی انگڈمز کی آؤٹ ڈیلنگ آتی ہیں, ان کے خط, ان کے میلز, وہ کبھی پھر ان کو اسکاؤٹس ہوا پہ لے جاتے ہیں, آداب جو ہیں سیاسی پارٹی میں بیٹھنے کے, وہ تاکہ بچوں کو وہ سمجھ آئے.
1: ٹھیک. اچھا, یہ ابھی جو ایک معاہدہ ابھی مکمل ہوا نہیں ہے, دو مہینے کے اندر یہ سارا بھی امریکہ ایران معاہدہ, تو اس حوالے سے اگر بتانا چاہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان میں اس کا کردار تو ہے, لیکن اس کردار کو امریکہ نے اس حد تک یعنی پذیرائی نہیں بخشی, کیونکہ چاہیے تو یہی تھا کہ جتنا کردار ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے اس میں ادا کیا اس حساب سے ان کو اس کا صلہ ملنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اپنے طور پہ ہی ادھر الیکٹرانک سائن کر کے دونوں ممالک نے تو اس کو شروعات تو کر دی ہے, لیکن مکمل تو ابھی ظاہر ہے دو مہینے کے اندر ہوگا. اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں؟
0: میں نے کیا سمجھنا ہے, میں وہی سمجھتی ہوں جو آپ سمجھتے ہیں, کہ انہوں نے اسپیشلی امریکہ نے اپنا الو سیدھا کر لیے.
1: ٹھیک ہے, فیس سیونگ مل گئی ہے ان کو.
0: ہاں جی, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا اپنا تھوکا چاٹنا مشکل ہو جاتا ہے, دیٹس واٹ دے ڈڈ. کیونکہ خود اگر کرتے تو پھر آتا جی ہاں امریکہ نے دیکھو جی اپنے لفظ وڈرا کر لیتے نیا کیتے, انہوں نے کوئی تیجی چیز چاہیے سی کہ جڑا کہنے جی اس کے کہنے پہ ہم نے کیا, تو انہوں نے اپنا الو سیدھا کر دیا.
1: لیکن آنے والے وقت میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تکمیل تک پہنچے گا, کیونکہ اسی دوران اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر بہت زیادہ حملے کیے ہیں اور اس میں کافی تعداد میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں, تو اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مکمل کیا جائے گا معاہدے کو؟ کیونکہ ایران کا تو یہ موقف اس میں شامل ہے نا معاہدے میں کہ لبنان پہ یا باقی جگہوں پہ یہ حملے وغیرہ نہیں ہوں گے, اس میں شامل ہے یہ معاہدے.
0: جی بالکل ہونا تو چاہیے, لیکن ہے کہ اس کا نام امریکہ ہے, جو دوسرا حریف ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جنگل کا بادشاہ انڈے دے بچے دے, ہم آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں.
1: لیکن اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ پوری دنیا کو اس میں شامل ہو کر, مڈل ایسٹ کو بھی, یورپ کو بھی یا باقی ممالک کو بھی اس معاہدے کو کامیاب بنانا چاہیے؟
0: بالکل, لیکن
1: یہ صورتحال امن کی طرف جائے.
0: دیکھیں, اس سے پہلے اگر مڈل ایسٹ ایک کردار ادا کرتا تو آج فلسطین کے یہ مسائل نہیں ہوتے.
1: جی بالکل,
0: ان کو ڈے ون سے ہی دلچسپی ہے ڈالر سے, امریکہ سے, اس کا جنی. تو میں ان سے کوئی, اور پھر یہ جو دبئی نے کردار ادا کی ہے پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو کردار, تو یہ تو چھپی ہوئی باتیں تھیں نا. ہم بے شک کہتے ہیں جی ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں, بٹ وہ ان کو یہ ریلیشن شپ نہیں چاہیے. اور باقی جو ہے کہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ میرے بھائی جو ہے وہ بزنس کی دنیا سے ہیں, سنتے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب ایون ڈینمارک سے بھی لوگ پاکستان میں جا کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے. ورنہ تو پاکستان کو تو بلا وجہ برا بھلا کا آ جاتا تھا, وہ کام بھی جو اس نے بیچارے نے کیے بھی نہیں. تو یہ کہ ان پاکستان کی ایک نئی شناخت ہوئی ہے انٹرنیشنلی, اور یہ ایک اچھی بات ہے. باقی ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ ہو. آخر میں ڈینمارک کے حوالے سے صرف یہ کہوں گی کہ یہ میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا, کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ کو مدغم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ڈینس فولکے پٹی اور سوشل ڈیموکریٹ ایک ہیں, اگر بہت ساری چیزیں ختم کر جائیں تو ڈینس فولکے پٹی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ابھی تو وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کہہ لو سوشل ڈیموکریٹ سب سے بڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا دماغ کہتا ہے, میرا تجربہ کہتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے, کیونکہ یہ اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے. یعنی ابھی تو ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر بھی تھا, کنگ کا پریشر بھی تھا کہ بھی ہم اس کو نپٹاؤ نا, کیونکہ اس کے اوپر उंगली उठती है, फरक के ऊपर जो कोंग है उसके ऊपर उठती है। तो अभी तो इन्होंने निपटा लिया है, लेकिन जब प्रैक्टिकल डीवीसी के जब मईशत ये पैसे पेशेंट्स को देने हैं, ये स्कूलों को देने हैं, उसमें मेरा ख्याल नहीं कि सोशल डेमोक्रेट और एसएफ स्पेशली ये मुत्तफिक हों।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो एसएफ की खातून अव्वल है आपको पता नहीं याद है या नहीं कि वो पता नहीं 100 मेंबर भी नहीं थे जब पार्टी डिसॉल्व होने जा रही थी तो इसने ओवरटेक किया था। ठीक है, उस बेचारी ने बड़ी मेहनत की है। ठीक है, और उसने अपनी पॉलिसीज में तब्दीली भी की है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लंबे अरसे के लिए चल सके ना, 4 साल बहुत लंबा अरसा है।
1: आप जैसे कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन, उसमें फिर आप क्या समझती हैं कौन सी पार्टी सामने आ सकती है मिड टर्म इलेक्शन के बाद? डेफिनेट अगर इन्होंने कोशिश करनी मिड टर्म इलेक्शन की तो ये मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म ये तो फिर ज़ाहिर साइड पे होंगी या कोई सामने और आएगा?
0: नहीं, अब लोग ज़रा सोच के, क्योंकि बेसिकल डेनिश इटेल्स के डेनिश लोगों की जो ज़हनियत है या जो दिमाग है वो अपने मुल्क की माशरे के हिसाब से बटा हुआ है। फिर लोग ये है कि 2 या 3 बड़ी पार्टियाँ होंगी। अच्छा। लोग फिर सोच के वोट डालेंगे ना, ऐसी दिल से नहीं, अच्छा जी इसको दे दो इसको दे दो, क्योंकि इस दफा तो ये हुआ ना, इसको दे दो इसको दे दो इसको दे दो।
1: तो लास्ट हो गए, आप समझती हैं कि ये सामने आ सकता है मिडटर्म इलेक्शन में अपनी
0: पार्टी? आ सकता है,
1: क्योंकि उसका भी इस हुकूमत में जाहिर है रोल तो है ना, तो वो कर सकता है।
0: नहीं, उसने ये किया ना कि सारी जिम्मेदारी इनको दी है, वो पीछे सिर्फ जो नहीं है वो चाबक लेके खड़ा हुआ है कि गंदे काम तुम करो, सफाई मतलब करवा रहा है।
1: ठीक है, ठीक है, चलें जी, आने वाला वक्त ही ये बता सकता है, तो देखें कैसे होता है। अच्छा, आखिर में हमारे अपने तारकीन वतन के लिए कोई ऐसा मैसेज, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे समाजी तौर पे हो, या मजहबी तौर पे हो, या एज ए मतलब कोई जनरल कोई अगर आप मैसेज देना चाहें कि आने वाले वक्त में हमें अपने बच्चों को किस तरीके से आगे चलाना चाहिए ताकि इस माशरे में वो जम हो या इसमें अपने किरदार को अच्छे तरीके से अदा कर सके?
0: आपको अपने बच्चों को उनकी शिनाख्त देना चाहिए।
1: ठीक,
0: अक्सर मुझे बहुत तासुफ और परेशानी या दुख होता है कि आप बैठे जो नहीं अपने बच्चों के साथ, जैसे मेरी उर्दू की क्लास है तो उसमें एक माँ आके पूछती हैं एक सैम्पल कि ना वदन गीक थी, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, अपने बच्चों से उर्दू बोलें भले ही वो आपको डैनिश में जवाब दें, उर्दू आप बच्चों की एक सकाफती शिनाख्त है।
1: ठीक है,
0: मुझे 55 साल हो गए डेनमार्क में, मुझे आज भी लोग पूछते हैं तुम कहाँ से आई हो, मैं आगे से कहती हूँ मैं वेल्बी से आई हूँ। तो कहने का मकसद है क्योंकि आप जब जुबान बोलते हैं उसमें तमीज़ भी है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जो ही आप किसी से आपकी आंखें मिले आपने उसको सलाम करना, ये नेकी है। इंतज़ार नहीं करना कि वो आपको सलाम करे, इससे इंसान का ईगो भी ख़त्म होता है कि जी वो करेगा तो मैं करूँगी। दूसरी, खुदा के लिए बच्चों के सामने टेलीफोन पर अपने दोस्तों की बुराइयाँ ना करें। ये बड़े ना पंजाबी के अंदर जो खोचल होंगे गल्ला सुनते रहते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं या फस्तो हो गए आप ये कहती हैं तो मैंने तो ये सुना है या वो सुना है ना, बच्चों के सामने आप जो नहीं है जो चीज़ें आप इखलाकियात की मज़हब की बच्चों को सिखाने चाहते हैं उनको बच्चों की मौजूदगी में मत तोड़ें।
1: ठीक,
0: और बाकी अच्छा, पाकिस्तानियों के हवाले से
1: कहना चाहते हैं आप?
0: हाँ जी, पाकिस्तानियों
2: जी, लुल्ला साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो बच्चे वो करते हैं जो बड़े करते हैं, वो नहीं करते जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और ये यकीन करें, हकीकत है, मेरे 3 बच्चे हैं, जब हम उनको कहते हैं कि ये आपने काम नहीं करना तो वो उसको नहीं कर, लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं अच्छा हो या बुरा वो यकीन करें उसको कॉपी करके वो करते हैं। तो ये लुल्ला साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
0: तो बाकी मैं बहुत सर्विस में गई थी तो वहाँ पे मैंने एक देखा कागज़ पड़ा हुआ था कि आप ना अपना वसीयतनामा बनाएं, एक बूढ़ी सी खातून है। अच्छा। और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी उसमें अच्छी चीज़ें हैं और मेरा आपसे वादा भी है क्योंकि मैंने उसको इतना डीपली नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट उठाया और लेके आ गई ना। उसमें जैसे आप अपने बच्चों के नामजदाद करना चाहते हैं, जायदाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो उसकी जो भी मलियत होगी उसका बच्चों को 15% देना पड़ेगा, आपकी वफात के बाद जो होगा وہ زیادہ ہوگا. اسی طرح آپ کے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ میں نے سنا تھا کہ ڈونیشن اور اس طرح کا آدھی کھادی خبر چل رہی تھی, تو اس سلسلے میں میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اپنی تیاری کروں.
1: اس پہ آپ کام کریں تو انشاءاللہ پھر آنے والے دنوں میں پھر اس پہ پروگرام تفصیل کے ساتھ بھی کریں گے
0: انشاءاللہ.
1: تو جی مزے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی باتیں ہوئیں ہم سب کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر فائدہ مند ہوئی ہوں گی, اور جو کوئی ناگوار گزری اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, ڈنمارک پائندہ باد.